0: موديها كم ميجا هاتس تبقى هي فعلا.
1: ए मावे सुट्टा लाफिंग
2: आहार में सुट्टा लाफिंग
3: ए लिस्टो को मावे सीमा ना ला
4: अमिल्ला फैसा आंधा गें अमिल्ला हाशिंगड़ा गेल्लुं दिरुमा की किहाम होए कमे ए में मावे सुट्टा लाफिंग
5: दुम फाई आहार में गे हाथोरे दुम फतो के इस्तेमाल करूं गे सब उन दिमावा सिही मसल तो होगा आहार को हैम मिलियन वुरे की नमी हु मरुआ कमा ताफासी साप तकुं दक्का फस नुजे ही अवह दुम्फतु के इस्तियो माल कुरूं हुट्टा लमा हिंगा
6: दिवे ही एफएम नुवधिया एके मेगाहर्ट्स
7: मी अहमद आमिद

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: दिव्य एफएम 91.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: बताइए।
1: ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है,
1: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
0: ओह काम तो बताइए बताइए।
1: ना ना न

0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाबा।
0: सुनो तो सुनो तो सुनो तो आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: यहाँ आए किस लिए?
1: आपने बुलाया किस लिए?
0: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है।
1: देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: දෙහස් පන්සීස් වනහ රිලිස් කුරි හින්දි ෆිල්ම් හෝම් පවුන්ඩකේ නීරජ් කයිවා නදී සුමිත් රෝයිගේ ස්ක්‍රීන් ප්ලේයක නීරජ් කයිවාන් ඩයිරෙක්ට් කෝ ධර්මා ප්‍රොඩක්ෂන් නු නෙරුණු ෆිල්මේ ෆිල්ම්ගේ ලී තරිනකී ඉෂාන් කත්තර් විශාල් ජිත්වා අදි ජාන්වි කපූර්
1: हेलो सर पुलिस भर्ती का रिजल्ट कब तक आएगा
0: कभी हंसते बेवजह होमबर्न के मैकन वाहक के दक्वा देनी उत्तर इंडिया के कुडरशे गोले कुडेरु के देरहमे तिरिंगे वाहक ए दे मीहुंगे वे सुवफने की फुदुस ऑफिसर नवुं एमीहुं देखे गोतुगा फुदुहुं के यूनिफॉर्मुं एमीहुं न दुवाहक स्लीफनवा इख्तिराम लिपिकें दाने ehen kamun gaumi fuluhunge imtihana tayyarwe e imtihanum faasuma masikke kuramundaniko emihunge amaza ummetoge bara dimawa haletoge sabun emihunge hivara rahmetirkama kurimatiwa gunjehunta mi filmun dakkuade
1: so jaise ki aap dekh sakte hain pani ki reading yahan pe 250 dikha raha hai yani ki it's not drinkable but don't worry sir we have our best technology puros aro filter jisme hai uv yani ultraviolet radiation technology and uf yani ultraviolet filtration and in the market
2: it's the best ye jo kuch aap bol rahe hain na ye bahut mehanga lag raha hame
1: emi option bhi hai ma'am
2: hum kyon lenge emi pe
3: humko zarurat nahi lagti iski
4: sir ma'am sir ha
5: nahi ma'am hum keh rahe the ki आप तो जान ही रही हैं कैसे खराब पानी से टाइफाइड दस्त ये सारी बीमारियां भी फैल रही हैं और ऊपर से दवा इलाज का खर्चा अलग
2: पर हम हमारा पानी उबाल के पीते हैं
5: सही है मैम पीना भी चाहिए लेकिन पानी उबालने में भी रोज 15-20 रुपए गैस जाती है ना और सिलेंडर के दाम तो आप देख ही रहे हैं कैसे आसमान छू रहे हैं अगर जोड़ घटा के देखें तो ये हमारा फिल्टर आपकी बचत ही करवाएगा और आप सब की सेहत भी ठीक रहेगी
0: विवाह के की देहास विहिवनाहर न्यूयॉर्क टाइम्स नेरुनु आर्टिकल लकुं इंस्पायर वेगें लिएफवा वाहके अ टेकिंग अमृत होम गे नमगे नेरुनु ए आर्टिकल गे नंग फहुं अ फ्रेंडशिप अ पेंडेमिक एंड अ डेथ बिसाइड द हाईवे अ बदल कुरेवुनु मे आर्टिकल दियुनी कश्मीर गे नूसवेरिया बशारत पीर ए आर्टिकल गा अलियलवाला फनी कोविड नवारा गे लॉकडाउन गे तिरेगा देहास विहिवनाहर गे मार्च महु सूरत का ताशेफति बिदे जुआ मसेकत मी हुना कुरिमतिवे हागीगी हादिसा तके के मच्चा मे आर्टिकल फिल्म का बदल कुरुम के तेरेगा मैगण दे कैरेक्टर गे बैकग्राउंड स्टोरी या बदल गेनेस फिक्शनल कोफवे नाम वेस आर्टिकल गे मैगण इमोशन तवनी हिमनाफा मे प्रोजेक्ट फेशिकेंग ए कोविड नवारा गे बलिमड कम गे दुवसवरुग धर्मा प्रोडक्शन गे प्रोड्यूसर सोमन मिश्रा नीरज कैवण ए आर्टिकल कियालु मद्दिन हिसाबुं मि फिल्म गे मसेक के फशा धर्मा प्रोडक्शन नु न्यूयॉर्क टाइम्स उं मि आर्टिकल गे राइट्स कतुमफो मा गिना दोस्त के नुए फिल्म स्क्रिप्ट के मसेक के फिशी फ्रांस के प्रोड्यूसर मेलिटा टोस्कांदो प्लांटिए वनी फिल्म गे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर गे गोतुगा मार्टिन स्कोर्सीजी हम जसाफा अदि नीरज स्क्रीन प्ले लियुम गे मसेक कतुगा एही तरकम फोर को दीफवे फिल्म के थिंक कट वेस फाइनल कोफवनी एनागे अप्रूवल लायकीगा होमबर्न के प्रोडक्शन मसे के कुरिया गेंगोस फवनी देहा सर्विस वना हारु मैगन गोते ग इंडिया गे मध्य प्रदेश स्टेट के भोपाल आदि एगे वशागन वा हिसाब तोग फिल्म के शूटिंग कुरिया गेंगोस निम्माला फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के मसे कतफहु मि फिल्म फाइनल अगवा मि फिल्म वर्ग दक्कम फेशी देहास फ्रांसेस वनाहरुगे मे महुगे 21 वना दोहु फ्रांस का बेवनो है दिहा अववना केन्स फिल्म फेस्टिवल गा मि फेस्टिवल गे अनसर्टेन रिगार्ड बैगा मि फिल्म दक्का फवारु फिल्म दे कुमा फहु गाकनक नुअपिनेट के स्टैंडिंग ओवेशन ने मि फिल्म वनी दिबिफा एफओ देहास फ्रांसेस वनाहरुगे ऑगस्ट महु बेवी मेलबर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गवस मि फिल्म वनी अलवाफा अदि देहास फ्रांसेस वनाहरुगे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गे गाला प्रेजेंटेशन बाय अवस मि फिल्म होवनो इरु ए फेस्टिवल का मि फिल्म दा काफवनी देहास फ्रांसेस वनाहरुगे सेप्टेंबर महुगे दिहवन दोहु
6: सरकारी फार्म की कैटेगरी वाले डिब्बे भर के औकात है हमारे और बस वही तक सीमित है वही हमारी पहचान
7: पहचान वो नहीं है बे जो हमें पकड़ाई गई पहचान तो वो है जो हम खुद बनाते हैं
0: सिनेमा तोगे देखूं गे कुरिंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन नों एकार बदले मी फिल्म अगे ने ए बदल तोगे सबुं एमिनेटा सतार सिकंतु गे फुटेज सेंसर कुरेबुनो होम बाउन इंडिया के सिनेमा तोगे दक्कम फशाफ वन इतिहास फंसवेस वना हरुगे सितंबर महुगे 26 वन दुवहु होम बाउंड की नुअदिहा अव्वन एकेडमी अवार्ड्स के बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी गे इंडिया के रस्मी एंट्री वस्मे ಬಲಾಲಂಸಲಿ ಮಿ ಶೋಗ ದೆಂಗ್ ಅಳ್ಕುನಿ ಹಿಮನಾಲ್ ದೇನಿ ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಲವೆ ಹೋಮ್ ಬೌಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಗ ಮಾಗಿನ ಲವತಕೆ ಹಿಮನಾ ಫನುವೆ ಕಮ್ ಗವಿಯಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಗ ಹಿಮನೆ ಯಾರ್ ಮೇರಾ ಮಿ ಲವೇಕಿ ಗಿನ ಬಯಕ ವರ ಕಮುದಿಯ ಲವೆ ಮಿಲವ ಕಿಯಾಫನಿ ಜಾವಿದ್ ಅಲಿ ಅಮಿತ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಅದಿಪೆ ಪೊನ್.